0: dar sang ye jerang etat pa nang jene dikre be na chewang dol ma tang thopa ni phul ka ni choslo san azats nga je akashwani le ne jun jik tang in sanga to chu chot ri kya charuk ka sata akashwani de le ne samacha prabhat tang morning news san azat
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के TV चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में

0: भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant

दाक्सांगे जरांगे टाशी युरों तांग टोपाओ निस्ताल काने जुंगलो रेक्सा नजाच ngaje जे आकाशवाणी लेने जुंजिक तांगेन स्ना तोचु चोत उर्गु चारुक कसता लादाक्सना नसुल सनाजात

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कसता शोर फिल्म में लूबो महेंद्र कपूर तंग ठबगुन ने सनाजात लूर चोमकन वर्मा मलिक यंग लुयांग जेकन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लाल

कसता खुशबू फिल्म लूबो आशा भोसले ने सनजात गुलजारिश सुमजत कने ई लूबो लुयांस डिकन आर डी बर्मन।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to the national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. The Supreme Court will today pronounce its judgment on the batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision, SIR, of the electoral rolls done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Suryakant, and Justice Joy Mallya Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenge the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and the rules framed thereunder. President Draupadi Murmu will visit Nathula Pass in Sikkim this morning on the second day of her visit to the state. The president will interact with the soldiers stationed at Nathula, where senior army officers will brief her on various activities in the area. She will also visit the Baba Harbhajan Singh Shrine. Later in the day, President Murmu will award degrees and medals to the students during convocation ceremony of Sikkim University at Manan Kendra in Gangtok. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling supply chains, innovation, and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. Prime Minister Narendra Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tributes to the former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his death anniversary. The Indian Air Force has announced a new scheme for recruitment to its technical branch in the officers' cadre through GATE scores. The Ministry of Defence said candidates with a valid graduate aptitude test in engineering or GATE score will be directly shortlisted for testing at the Air Force selection boards. Under the scheme, eligible candidates will not have to appear for the preliminary written examination, including the Air Force Common Admission Test or AFCAT. Selection will be based on merit. The Ministry of Railways has approved the launch of the country's first hydrogen-powered 10-coach DEMU train. The move marks a significant step towards promoting green and sustainable transportation in the railway sector. The train will run between Jind and Sonipat at a maximum speed of 75 km per hour using hydrogen fuel cells to generate power. Russian embassy in South Africa has said scientists in Russia have developed a new vaccine against the latest strain of Ebola virus. Russian Health Minister Mikhail Murashko announced the development. Scientists said the vaccine may also work against the rare Bundibogyo strain linked to recent outbreaks in the Democratic Republic of the Congo. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs, Gujarat Titans were all out for 162 with 3 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इजराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि CEPA व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: सरकार का प्रयास है कि चीजों को आसान बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। हमने बहुत ही अच्छा और संतुलित समझौता किया है।
1: इजराइल की सेना ने कहा है कि गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने ये आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओदे हाल ही में अजेद्दीन अल हदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अल हदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को निशाना बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
4: श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गांव पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनान और इसराइल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमेरिका में होने वाली बैठक से 3 दिन पहले हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसराइल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनन में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंडमास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला होगा जापान की रिको गुंजी से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इजराइल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good morning. This is Akashwani. I am VC Pramod with the World News. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar co-chairs 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi. Israeli military says it killed Mohammed Odeh, new head of Hamas's military wing in Gaza and key planner of October 7, 2023 attacks. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build a lunar base. And Grandmaster Inian Paneerselvam clinches double gold after winning both rapid and blitz titles at Commonwealth Chess Championship in Sri Lanka. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi last evening. Dr. Jayashankar said that they exchanged views on the Indo-Pacific, the situation in West Asia and other regional, global and multilateral issues. They also reviewed the steady progress of the comprehensive strategic partnership between the two nations. Dr. Jayashankar added that cooperation is expanding in energy sector, including uranium supplies to generate nuclear energy.
7: On the energy side, we are looking to expand that as well into uranium supplies. Our own nuclear sector has undergone reform, which would grow through nuclear energy. Our teams have been in discussion on critical minerals as well. Our defense exchange and exercises, again, have been taking place. Our maritime cooperation has been the centerpiece of that. We've had some talks on space cooperation.
6: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has expressed confidence that the next chapter of the India-Canada economic partnership will be driven by trust leading to the shared prosperity of the two nations. Addressing the opening ministerial plenary session from political reset to commercial delivery in Toronto, Canada last night, Mr. Goyal emphasized that trust between the nations is unlocking new trade and investment opportunities as both sides push for Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA. The minister spoke about how the CEPA will serve as a key catalyst in expanding trade and investment ties while opening new avenues for collaboration across sectors. He also said that diversity defines relations between India and Canada.
8: Our effort at the government level is to make it easier to work with each other. Free trade agreement, of course, will help with reducing barriers to trade, tariffs and non-tariffs. It will open up a plethora of investment opportunities, but more significantly will be the messaging that will go out with the free trade agreement or the comprehensive economic partnership. We will achieve a

नमस्कार, आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं एक बार फिर आपसे ढेर सारी बातें करने और बॉलीवुड गानों से जुड़ी आपकी नॉलेज को टेस्ट करने भी। आपको क्या करना है ये वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन नए लिसनर्स की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि एफएम गोल्ड एआईआर दिल्ली @gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868686853 पर व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लिखना है अपना और अपने शहर का नाम, साथ ही कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये भी आप लिखेंगे और लिख भेजेंगे उस गीत के बोल भी जिससे जुड़ा एक आइडेंटिकल म्यूजिकल पीस मैं अब आपको सुनवाने वाली हूं। तो बाकी बातें बाद में, पहले सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए ये म्यूजिक पीस। एक बार और सुन लीजिए। तो अगर पहचान लिया है ट्रैक तो तुरंत कर डालिए अटैक, जल्दी से लिख भेजिए गाने का मुखड़ा और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत जिसकी फरमाइश आई है हमारे पास दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय ढींगिया संदीप मक्कड़ अनिल जैन दर्शन भाई की ओर से। मेरठ कैंट से आई है ये फरमाइश।

जीवन की सुगंध का आनंद वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महक जाने की काबिलियत रखता है। जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर कर लेना। कितनी अच्छी बात लिखकर भेजी है अनु बड़जात्या जी ने मुंबई से सीधा। शमशुल खान और अनुराज बेनारा भी इनके साथ इस मैसेज में शामिल हैं। और एक बात भी लिखी है इन्होंने, लिखती हैं कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। क्या बात है, बड़ी गहरी बात लिखी। और बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी इस बहुत ही अच्छे मैसेज के लिए। और इसी के साथ अब मेरी नजरें ढूंढ रही हैं अगला मैसेज जिसमें भी लिखी हो कुछ ऐसी ही बात। मिल गया है। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ दवा से जाता है, लगा दे मरहम कोई अपनेपन का तो भी सुकून आ जाता है। और इसी के साथ लिखी है अपनी फरमाइश मनोहर लाल गांधी जी ने विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और सवाल का जवाब जो धुन मैंने अभी आपको सुनाई उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि फिल्म कुर्बानी का ये म्यूजिक लग रहा है। है नहीं, गलत जवाब है। थोड़ा सा और सोचिए, अभी फिर से सुनवाती हूँ आपको ये म्यूजिक पीस। और उम्मीद है मुझे

आप जल्द ही पहचान जाएंगे। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है। क्या बता सकते हैं भाई? बोधराज खोरवाल जी कह रहे हैं कि भरोसा है वो पासवर्ड, और मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सही बात है। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। और इसी के साथ चलते हैं एक और मैसेज की तरफ। सतीश अनेजा जी ने भेज दिया है हर रोज की तरह अपना खूबसूरत सा शेर लिखकर। लिखते हैं, पुरखलूस सलाम नाज बहना जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं, बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं देते हैं। लिखा है आगे कि हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, तेरी दुआओं के संग रब की रजा हो जाए। मिले आज तुम्हें वो खुशियां प्यारी बहना नाज, हजारों सालों तक गम तुझसे खफा हो जाए। और इसी के साथ अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। चंडीगढ़ से ये मैसेज आया है। सतीश अनेजा जी के साथ बिमला अनेजा भी शामिल हैं इस मैसेज में। तो चलिए मैं नोट करूं वो सभी नाम जो लगातार भेज रहे हैं आज के सवाल का सही जवाब। चलिए एक बार म्यूजिक पीस और सुना देती हूं, फिर सुनेंगे अगली फरमाइश। बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया है और जवाब लगातार आ भी रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी फरमाइश हमारे पास आई है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार की ओर से, खरगोन सनावद एमपी बोडाना से ये फरमाइश आई है। इसके अलावा सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप भी इस फरमाइश में शामिल हैं भाई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर

जी हाँ, बिल्कुल यही म्यूजिक पीस है वो जिसे आप सुन रहे हैं बार बार और पहचान भी रहे हैं, सही बोल भी लिखकर भेज रहे हैं और साथ में भेज रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं, मुसीबत तो एहसास वालों की है। सुप्रभात, ये खूबसूरत मैसेज आया है विजय नारंग जी की ओर से, नन्हे पहलवान बाजार सीताराम से, दिल्ली से, और साथ ही भेजा है आज के सवाल का जवाब भी। एक और मैसेज आया है, हर मुसीबत के देखिए दो समाधान होते हैं, भाग लो या भाग जाओ, भाग लो या भाग जाओ, चॉइस आपकी है, जो भी आपको पसंद हो। सत प्रकाश सनोठिया जी ने ये राय दी है, रोहिणी दिल्ली से, और बहुत ही सारे मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं लगातार, जिन्हें देखकर खुशी तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर मैसेज शामिल नहीं हो पाए सारे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं भी है, तो आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसा नाम है नाज तुम्हारा वैसे नाज नहीं है तुम्हारे, इसी बात ने जीता मन हम सबका, घोला शहद श्रोता के मनों पर अपनी मधुर वाणी का। एस के खन्ना साहब ये लिख रहे हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही लिखा है कि हम तो आज उत्तर नहीं देंगे क्योंकि आप शामिल ही नहीं करते। अब देखिए, आपने आज ही उत्तर नहीं देने का फैसला किया और मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है आपका नाम तो मैं कई बार पढ़ चुकी हूं जनाब, कहीं कोई ट्रिक तो नहीं। बोधराज खोरवाल साहब का ये मैसेज उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी के साथ, भेज दीजिए। चलिए माफी मांग लेती हूँ, अब तो मैसेज शामिल कर लिया, जल्दी से भेज दीजिए जवाब। चलिए अगला मैसेज शामिल करेंगे हम, एक और नाराजगी आई है भाई कि आपने आज तक मैसेज शामिल नहीं किया हमारा। तोहमत है ये तो। नवाब अहमद भारती साहब का ये मैसेज है, तो माफी के साथ मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है, और साथ ही ये भी लिख दिया है कि भाई हमारी समझ में तो नहीं आया कि ये म्यूजिक ट्रैक किस गीत का हिस्सा है, किस गीत की शुरुआती धुन है। वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन उम्मीद है अब आप नाराज नहीं होंगे। और सोचता हूँ आज पर्दा हटा दूँ इस राज से, सोचता हूँ आज पर्दा हटा दूँ इस राज से, दिल का मेल बॉक्स में रौनक है मैडम ना से। क्या बात है सर, बहुत अच्छा शेर आपने लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बाकी सभी आरजेस भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं मेरी तरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मैसेज आया है गगनदीप थांदी जी की ओर से, लिखते हैं बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। देर हो गई उसके लिए माफी, लेकिन अभी तो मैसेज शामिल हो गया है। चलिए जल्दी से एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं, फिर सुनेंगे अगली फरमाइश, लेकिन माफ कीजिए घड़ी तो बहुत तेजी से भाग रही है। अगला मैसेज शामिल करेंगे और उसके बाद जानेंगे आज के सवाल का सही जवाब और नाम भी। तो नाज जी आदाब नमस्कार, ये आवाज नहीं कोई सुहाना सा ख्वाब है, खुदा की फुर्सत का सबसे हसी जवाब है, बनाए रखना इस आवाज को नाज जी हमेशा, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में यही नायाब है। आपकी आवाज का जादू कुछ ऐसा असर करता है कि खामोश सा दिल भी धीमे से धड़कता है, लहजे में जो छुपा है एक मासूम सा नाज, उसी सादगी पर दिल बार बार मरता है, जब बोलती हो आप तो समा ठहर जाता है, हवाओं का रुख भी जैसे बदल जाता है, मिश्री सी घुल जाती है फिजाओं में, हर तरफ हर कड़वा लम्हा पल भर में सुधर जाता है। सच में सर कहीं रो ही ना दूं मैं, इतना खूबसूरत मैसेज, इतनी तारीफ। उफ, पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब की ओर से ये मैसेज आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बवलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी की ओर से, और इसके इनके साथ ही दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी, जो खुद को रेडियो दीवाना कहते हैं, शामिल है इस मैसेज में, इस खूबसूरत से मैसेज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए अब इस घड़ी को तो मैं नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, तो मैं ही बढ़ जाती हूँ आगे और बता देती हूँ आपको आज के सवाल का जवाब। तो दोस्तों ये म्यूजिक पीस जो आपने बार बार सुना आज, वो हिस्सा है
एक बेहद खूबसूरत गीत का, भोर भये पनघट पे। लता मंगेशकर जी की सुरीली और सूदिंग आवाज इस गाने के साथ आप सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का सुपर हिट म्यूजिक भी है इसमें। राग भैरवी पर बेस्ड इस गाने के बोल निकले हैं आनंद बख्शी साहब की कलम से। सुबह के समय जब आप इस गाने को सुनते हैं ना, तो बस इसी में खो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा। और आप महसूस करते हैं कि कोई अलहड़, कोई बहुत कम उम्र की आवाज इसे गा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब लता जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तब उनकी उम्र 50 साल के आसपास थी। बस यही तो जादू था लता जी का कि जीनत अमान जी, जो उस समय सिर्फ 26 साल की थी, उन पर वो आवाज बिल्कुल सटीक बैठी। प्यारे लाल साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस गाने के लिए लक्ष्मीकांत जी के साथ उन्होंने एक खास रिदम पैटर्न तैयार किया था, जिसमें एक अनोखा वेस्टर्न और क्लासिकल फ्यूजन आप सुनते हैं। मटके के पानी की खनक के साथ घुंघरुओं की थाप को बड़े कमाल ढंग से उन्होंने मिक्स किया और पेश किया हमें ये बेहतरीन गाना, जिसे आप सभी ने बिल्कुल ठीक पहचाना। और ये रहे वो सभी नाम, सभी तो नहीं कहूंगी वरना आप फिर नाराज हो जाएंगे। सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, मेहर अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से, मधुबाला तिलंग कोटला दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, सुमेरा परवीन बुलंदशहर से, पंकज मोहोड़ अमरावती महाराष्ट्र से, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, विजय नारंग दिल्ली से, सुनील पाठक अनार कली बाजार जगराओं से, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर से, चिन्मय महतो जमशेदपुर से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। और दोस्तों, मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शामिल नहीं हो पाए हैं। चलिए, कुछ वक्त है हमारे पास, तो जल्दी से उन नामों को भी शामिल करने की कोशिश जरूर कर लेते हैं। तो दिग्दर्शन साहब का भी मैसेज आ गया है सही जवाब के साथ। और फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा के साथ भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और अपना फरमाइशी गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा, लेकिन माफ कीजिएगा, आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाएगी वक्त की कमी के चलते। और अगला मैसेज मनोहर लाल गांधी जी का, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और कौन कौन कर रहा है मैसेज, चारू जटोलिया जी का अभी अभी मैसेज आया है कि देखिए, आप हमारा ईमेल पढ़ते तो हो नहीं, पर फिर भी हमें आपका एपिसोड बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है दिल्ली नागलोई से। और इसके साथ ही एक और मैसेज, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और ऐसी गर्मी से बचें और हल्के कपड़े पहने और ठंडा पानी पिएं। जैन मंदिर कुरावली से ये मैसेज राशिद हुसैन अंसारी साहब का। चलिए दोस्तों, आज के लिए दिल का मेल बॉक्स में यहीं तक था आपका और मेरा सफर, लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये गाना सुनेंगे, फिर समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, और ठीक 11:10 पर तस्वीर में फिर मिलेंगे, ठीक है ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज

0: चल रहे हैं। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। तो एक हिंट तो आपको मिल ही गया है कि आज हम चल रहे हैं पूर्वी भारत की ओर। जगह कौन सी है इसके बारे में एक हिंट और मैं आपको देती हूं कि वहां सुनाई देती है आपको टाइगर की दहाड़ और घने जंगल सुनाते हैं अपनी कहानियां। तो बूझिए और लिख भेजिए जगह का नाम तस्वीर की प्लेलिस्ट में शामिल इस पहले गाने के खत्म होने से पहले।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: कथई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

भाई दो मैसेज आए हमारे पास जिन्होंने नाम को गेस करने की कोशिश की कि आज कहाँ की तस्वीर आप देखने और सुनने वाले हैं। अनु बड़जात्या जी और कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने किया मैसेज, लेकिन अफसोस के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि आप दोनों का ही जवाब गलत है। तो दादा, अगर अखन तक नि बुझ ले तो सुन ले। गलत प्रोनंस हुआ क्या? उसके लिए माफी। तस्वीर में आज हम चल रहे हैं पूर्वी भारत के झारखंड राज्य और यहीं के बेतला नेशनल पार्क। जी हाँ, नेशनल पार्क ही है ये, आपने सही गेस किया, लेकिन नेशनल पार्क का नाम थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए फिर पहुंचे हम बेतला, उससे पहले कर लें कुछ तैयारियां। अरे भाई, ट्रेन से जाना है, बाय प्लेन जाना है या फिर बाय रोड जाना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट अगर मेरी लेंगे एडवाइस तो सेट कीजिए अपना बजट और पहले ही बुक कर लीजिए रांची एयरपोर्ट का टिकट, जो बेतला से लगभग 170 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा। सीधी फ्लाइट आपको यहां के लिए देश के हर बड़े शहर से मिल जाएगी और फिर टैक्सी या बस तो अवेलेबल है ही। दूसरा ऑप्शन आपके पास गया एयरपोर्ट का भी है, जिसकी दूरी बेतला से है करीब 190 किलोमीटर के आसपास। और यहां से भी आप आराम से बेतला पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन और बाय रोड क्या है रास्ता, बताऊंगी इस गाने के बाद।

तो बेतला नेशनल पार्क के लिए निकलना है और ट्रेन से जाना है, तो क्यों टाइम गवाना है? सीधा ऑनलाइन जाके टिकट बुक करना है बरवा डीह जंक्शन का, जहां से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के सफर के बाद आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। एक और ऑप्शन यहां पर भी है आपके लिए, और वो है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, जिसकी दूरी बेतला नेशनल पार्क से आपको पड़ेगी कुछ 25 किलोमीटर के आसपास। और बाहर निकलते ही रेगुलर तौर पर मिलती रहेंगी लोकल बसें, ऑटो या फिर प्राइवेट कैब भी। बाय रोड जहां तक जाने का मसला है, तो पहले पहुंचना होगा रांची और फिर पकड़ना होगा NH 75। लातेहार होते हुए आराम से आप बेतला पहुंच जाएंगे, और कार से इस सफर में आपको लगेगा सिर्फ 4 घंटों का समय। पटना से जाएंगे तो औरंगाबाद होते हुए NH 98 पकड़ेंगे, जहां से डिस्टेंस आपको पड़ेगा बेतला नेशनल पार्क तक का करीब 260 किलोमीटर। और जनाब, जब बैग पैक कर ही लिए हैं, मूड बन ही गया है, तो सुनिए एक और गाना और जल्दी से वॉशरूम वगैरह होकर आ जाइए, क्योंकि इसके बाद हमारी गाड़ी सीधा बेतला नेशनल पार्क

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ बेतला नेशनल पार्क की सैर पर, जो कि झारखंड राज्य के लातेहार और पलामू जिलों में मौजूद राज्य का इकलौता यानी एकमात्र नेशनल पार्क है। मशहूर पलामू टाइगर रिजर्व का ये एक मुख्य हिस्सा है और भारत वन

वन्य जीव संरक्षण और सफारी के नजरिए से बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। लगभग 1129.93 वर्ग किलोमीटर इसका दायरा है, जिसमें से टूरिस्ट बफर जोन है सिर्फ 53 वर्ग किलोमीटर। हरे भरे जंगल, पहाड़ियां, घाटियां और झरने आपको यहां पर मिलेंगे और साथ ही एक शांत आदिवासी गांव की सैर का मौका भी आप पा लेंगे। जानकारी आपको यहां पर यह जरूर होनी चाहिए कि बेतला नेशनल पार्क आपके लिए 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है, क्योंकि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मॉनसून के चलते इसे पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। बेस्ट टाइम अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको कहूंगी अक्टूबर से अप्रैल के बीच, क्योंकि इस दौरान मौसम यहां का बहुत सुहाना होता है। लेकिन जनाब, ये जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं, इसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। बस थोड़ी सी जगह आपके आसपास होनी चाहिए ताकि आप उठें और उठकर थोड़ा बहुत मटक सकें।

चलिए डांस हो गया तो अब गौर फरमाइएगा। बेतला नेशनल पार्क भारत के उन पहले राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है जिन्हें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर साल 1986 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा भी मिल गया। यहाँ के जंगलों में आपको दिखाई पड़ती है वनस्पतियों की एक विशाल श्रृंखला जिसमें साल और बांस मेन है। साथ ही कई मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उत्तरी कोयल नदी और उसकी कुछ सहायक नदियां भी इस पार्क के उत्तरी भाग से होकर गुजरती हैं और जिससे बनते हैं घास के मैदान जिन पर नंगे पांव चलते हुए आपके शरीर को मिलती है ठंडक और मन को मिलता है सुकून। पार्क के अंदर घूमने के लिए गाइड के साथ जीप सफारी आपके लिए मौजूद है और वन्य जीवों को देखने के लिए जगह जगह वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ के किन किन वन्य जीवों के होंगे आपको दर्शन जानेंगे, लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और थोड़ी सांस लेते हुए पिएंगे ठंडा पानी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, जहां आप मेरे यानी नाज के साथ निकले हैं बेतला नेशनल पार्क की सैर पर। अच्छा बेतला, ये नाम भी बड़ा खास है, कैसे? चलिए बताती हूँ। ध्यान देंगे इस नाम की इंग्लिश में स्पेलिंग पर, जो कि होती है BETLA, और जिसमें बी फॉर होता है बाइसन यानी कि गौर, ई फॉर एलिफेंट यानी हाथी, टी फॉर होता है टाइगर यानी बाघ, एल से होता है लेपर्ड यानी तेंदुआ, और लास्ट में ए यानी एक्सिस, जिसे चीतल या हिरण के लिए माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेतला नेशनल पार्क में आप सिर्फ इन्हीं कुछ जानवरों को देख पाएंगे। इनके अलावा आपको यहाँ पर स्लॉथ बेयर, जिन्हें सुस्त भालू कहा जाता है, अच्छी खासी तादाद में दिखेंगे। चित्तीदार और सांभर दोनों तरह के हिरण आपको यहाँ घूमते फिरते मिल जाएंगे। इनके अलावा बारहसिंगा और काकड़, जिन्हें भौंकने वाला हिरण भी कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ बेतला नेशनल पार्क में नजर आएंगे। ब्लू बिल यानी नील गाय भी पार्क के खुले मैदानी इलाकों में नजर आती हैं, और इनके साथ ही घने पेड़ों की डाली से झूलते लंगूरों और शरारती बंदरों की तो आपको यहाँ पर भरमार ही मिलेगी। बर्ड वॉचर और इनके लवर हैं आप अगर, तो भी बेतला नेशनल पार्क आपके लिए है। कैसे जानेंगे आफ्टर दिस एक और गाना मस्ती वाला।

हाँ जी, तो बर्ड वॉचिंग की हो रही थी बात इस गाने से पहले, तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। बात भाई सीधी सी है कि रंग बिरंगे चहकते और गुनगुनाते करीब 170 से भी ज्यादा तरह के पक्षी आपको यहाँ नजर आएंगे। कहाँ? अरे यहीं बेतला नेशनल पार्क में, जहाँ की सैर आप कर रहे हैं मेरे साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप, और तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, अब तो याद आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी मेन प्रजातियां हैं यहाँ पक्षियों की, जिनकी पिक्चर्स आप जरूर क्लिक करना चाहेंगे अपने फोन में। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है मोर, जो बहुत बड़ी तादाद में आपको अपनी सफारी के दौरान चहचहाते और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि नाचते हुए भी दिख जाएं। इसके बाद हॉर्नबिल, जो अपनी अजीबोगरीब और बड़ी चोंच के लिए मशहूर है, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। फिर जंगली मुर्गे, चील, बाज और उल्लू जैसे पक्षियों की कमी तो यहाँ है नहीं। कमलदहा नदी और उत्तर कोयल नदी की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ वाटर बर्ड्स जैसे बगुले, बत्तख और यूरेशियन कूट जैसे प्रवासी पक्षी भी नजर आ जाएंगे। तो है ना एकदम हेवन वाली फीलिंग, यही इसी धरती पर यकीनन यही महसूस करेंगे आप बेतला नेशनल पार्क आकर कि वाकई कुदरत ने क्या गजब कर डाला है।

डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखिए पार्क काफी बड़ा है और एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया भी है ये, तो अंदर आपको जगह जगह पर रेस्टोरेंट या कैफे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकारी वन विभाग की कैंटीन या फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आप जरूर पेट पूजा कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं आपको कि पार्क के अंदर किसी भी तरह का खाना ले जाने की सख्त मनाही है, और ऐसा आपकी ही सेफ्टी के लिए है। भाई खाना आपके साथ होगा तो जानवर भी तो साथ आना चाहेंगे आपके, है ना? तो सजेशन मेरा आपको यही है कि पार्क के मेन गेट के बाहर जो कुछ खाना है खा लीजिए, और फिर भी अंदर भूख लग जाए तो सीधा वन विभाग की कैंटीन का रुख कर लीजिए। हाँ, लेकिन पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखिए, चाहे आप कहीं पर भी हों। और फिर पार्क के बाद बेतला में जब आप घूमने निकलेंगे तो आपको झारखंड की लोकल कुजीन जरूर टेस्ट करनी चाहिए। धुसका खाइए, जो बेसिकली चावल और चने की दाल का बना एक डीप फ्राइड स्नैक है, और इसके साथ ही आपको मिलेगी मडुआ यानी रागी की रोटी। और नॉनवेज के शौकीन अगर आप हैं तो आपके लिए रहेगी एकदम स्पेशल चिकन और मटन करी। पार्क के अंदर सरकारी कैंटीन में मिलेगा आपको

0: एकदम गर्मा गर्म घर का खाना। थालियों के कई ऑप्शंस रहेंगे और फास्ट फूड की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ मुझे यानी नाज को आपसे विदा लेनी होगी, क्योंकि तस्वीर की आज की समय सीमा यहीं पर खत्म होगी। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय और नमस्कार।
1: तो हम चलते हैं।

0: IET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाजी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
5: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
6: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
5: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
6: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
5: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
6: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
5: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
3: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
5: मश्क।
4: होशियार,
5: समझदार,
4: पेंसिल तराश,
5: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
4: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
5: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
2: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
7: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
8: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
7: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
8: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
7: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
9: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
10: क्या बात है,
9: सुनकर ही जोश आ गया।
10: हाँ
9: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
10: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
5: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है
11: दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
12: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
11: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
13: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
14: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
13: अरे देख लेंगे।
11: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
7: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
12: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
15: क्या बात कही है?
7: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
12: धन्यवाद।
11: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू बीवी बच्चों वाला है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।
2: दर्शक इशारा एन सी ई आर टी चिंतक जत का ने टिक्रीम उमंग खाक चिक्सतों निप गया गुप्चो को सुनपा सन जत नाजे आकाशवाणी लेने शुंजिक तक इन गिमे छुसो चिक छरुक का सता आकाशवाणी दिल्ली ने स्मुला हिंदी यंग टेस्टिंग ने अंग्रेजी ना नसुलगुन सन जत।

0: निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। द The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the US and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to US President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's defense minister, Khwaja Mohammad Asif, rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.
2: Medium wave 284.9 meters, yani 1053 kilohertz, aur FM 101.1 megahertz par ye Akashvani Leh ki awaaz hai. Pesh hai Fauji Bhaiyon ke liye program.

जय हिंद। स्वागत है आप सभी फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के प्रोग्राम में। तो लीजिए सुनिए प्रोग्राम का ये पहला गाना बंटी और बबली फिल्म से, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गीतकार है गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए, सुनिए ये अगला गाना सोनू निगम और सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में, युवराज फिल्म से। गीतकार है गुलजार और संगीतकार बिन्स लव।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए कि अगला गाना सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़ों में जाने मन फिल्म से। गीतकार है गुलजार और संगीत

फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना, दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में लीजिए सुनिए ये अगला गाना दबंग फिल्म से। गीतकार है जलीस शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद।

फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम के आखिर में लीजिए सुनिए ये गाना मोहित चौहान की आवाज़ में लव आजकल फिल्म से। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का अयादा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है।

0: आईएमडी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहान के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज़ करार दिया है और यह भी कहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आइन में इस तरह की नजरसानी की गुंजाइश रखी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अदालत आलिया ने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों में खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरख्वास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीक़ेकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: दिल्ली में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का काम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव फहरिस्तों का मुसविदा 5 अगस्त को शाये किया जाएगा और हतमी चुनाव फहरिस्त इस साल 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। दिल्ली के आला चुनाव अफसर ने कहा कि खुसूसी नजरसानी का असल मकसद ये है कि कोई भी अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से बाहर न रह जाए और गैर अहल वोटर फहरिस्त में शामिल न होने पाए। जनाब अशोक कुमार ने कहा कि बूथ सतह के अफसर अगले महीने की 30 तारीख से घर घर जाकर दिल्ली चुनाव फहरिस्तों की तस्दीक करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी को निज़ाम की ज़रूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा भी किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वो जिसमें पानी की कमी ना होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वह अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीजों की खैर आफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे रबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम भी करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकोनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शुमाल मशरकी खत्ते में इतवार तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले तीन चार दिन के दौरान केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के बाद हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्या नगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक उसने तीन तलबा की मुलजिम पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था, जिसमें मुलजिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राहम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवता नैनी अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्ज हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द विंटर न्यूज। The headlines. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And now the news in detail. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The court held the SIR process had a nexus with the goal of having free and fair elections. The court said free and fair elections depend on accurate and credible electoral rolls and observed that the Election Commission's revision exercise aims to remove possible errors and duplication caused by migration, urbanization and decades without an intensive revision. On the Supreme Court upholding ECI's decision to undertake SIR of voter rolls that started in Bihar, BJP leader Nalin Kohli has said that the Election Commission is mandated under the constitutional scheme to take care of elections in India and having free and fair elections is a basic requirement of a democracy.
4: Having free and fair elections is a basic requirement of a democracy. In that context, at regular intervals, the Honorable Election Commission has these special intensive drives in terms of correcting the voter list. And every political party has a stake to ensure that elections are free and fair and the voter list is absolutely pure. Only bona fide voters are there. This is what the scheme of things is. And that's what the Honorable Supreme Court has held. So I think it should close the doors on those who are raising unnecessary questions against the Honorable Election Commission.
3: The Special Intensive Revision SIR of the Electoral Roll will begin in Delhi from the 20th of June. Addressing a press conference in New Delhi today, Delhi Chief Electoral Officer Ashok Kumar said the draft electoral roll will be published on the 5th of August and the final electoral roll will be published on the 7th of October this year. Booth level officers will conduct door-to-door surveys from the 30th of June for verification of Delhi's electoral rolls. He said, under the SIR process, every elector will receive two enumeration forms, one copy of which will be held by the elector and the other will be submitted to the booth level officer after filing in the required details. He said that no documents are required to be submitted with the enumeration form. Our correspondent reports that voters residing in Delhi before 2002 can verify their names using the 2002 electoral rolls, while those who shifted to Delhi after 2002 can trace details through an Election Commission of India portal. More from our correspondent.
5: Facilitated voter participation, awareness drives and special camps will be organized to assist electors in submitting their enumeration forms. The main objective of the SIR is to ensure that every eligible citizen is included in the electoral roll, while no ineligible person is allowed to remain on the electoral roll. Around 13,000 booth level officers will conduct house-to-house survey and voters will have the facility to submit completed enumeration forms online. All district election officers have been directed to gear up their election machinery for the successful conduct of SIR. For the convenience of the general public, the voter list of the last special intensive revision held in 2002 in Delhi has been uploaded on the website of the commission. During this period, rationalization of polling stations will also be undertaken. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Ministry said The meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister, Maninder Sidhu, and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaboration. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by the Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused, P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions from the arrested accused, Manisha Havaldar. CBI has so far conducted searches at 49 locations at various places and seized several incriminating documents, laptops and mobile phones. The Enforcement Directorate has started inspection in various places in Kerala, including the residence of former Chief Minister Pinarayi Vijayan. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
6: The Enforcement Directorate has started inspections at various places, including the residence of former Chief Minister Pinarayi Vijayan in Thiruvananthapuram since this morning. Inspections are being conducted at more than 10 locations across Kerala. However, the Enforcement Directorate has not provided any information about the operations. State Home Minister Ramesh Chennithala informed that the state police is not involved in the operations. Meanwhile, the Kerala High Court yesterday dismissed the petition against the enforcement case information report. The petition was filed by the officials of a private company from Kochi in Kerala. Inspections are also being conducted at the premises of the private company. Smithy M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
3: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Amid the continuing spell of extreme heat in Rajasthan, an orange alert for heat wave conditions has been issued today in five districts of the state. A report.
7: Most parts of the state continue to reel under scorching heat. People are facing intense discomfort during the day while nights to remain unusually warm with little relief. Minimum temperatures have also been reported above 30 degrees Celsius in several cities including Jaipur, Kota, Jodhpur, Nagaur, Bikaner and Dausa. Kota witnessed the warmest night with the minimum temperature hovering around 33 degrees Celsius. In view of the severe heat wave and hot winds, the administration has been taking continuous measures such as sprinkling water on roads, setting up temporary shelters and ensuring the availability of drinking water at various locations. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
3: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today over parts of Delhi, with maximum temperature expected to be hovering between 43 and 45 degrees Celsius. The Met Department has also predicted severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. The theme of the International Day of Yoga 2026 to be observed on the 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. Union Minister of State for Ayush, Independent Charge Mr. Pratap Rao Jadhav said this while attending the Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 in Khajuraho today. The United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the US and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said the comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to US President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's Defense Minister Khwaja Muhammad Asif rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. He said Pakistan would not support any agreement that goes against the country's fundamental ideologies. India's permanent representative to the United Nations, Parvataneni Harish, has strongly criticized Pakistan at the UN Security Council, accusing Islamabad of continuing cross-border terrorism and warning that it would face consequences for sponsoring terror activities against India. Harish made the remarks during the UN Security Council open debate on upholding the purposes and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centered international system.
8: Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. Cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by a thousand cuts exposes its hollow rhetoric. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
3: At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli airstrikes across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. On to sports. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match this evening at New Chandigarh Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. In badminton, India's top player H.S. Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. India, Canada reaffirm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. US Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in US-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
9: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी

0: भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत

0: अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडिया को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों

0: ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ebo Akash Fani Lane kasatang jirangi chadanta shine shna su janaza Ladakh ujung azdir shishkong jon ba Vinay Kumar Saxena dang sham zong iziskor tangpo zatenok yang sham yuljong la rzong sose chat topkani rgastone nanga skundor chwe chula thuza zatenok itu sham yuljong si chos tang shidi uskong guntang gamil sose gobar sos pe yulmit samme chosne shishkong jon ba rgasu jo zatenok Itus Kongos Zadgwa Sungsha Talenjik Sojung Chosne, Utiladak Senar, Zong Somash Nga Salchisne, Yuljong Simimans Kunla, Jung Pantos Kun Lamung Yampo, Len Tupchet in Obolenjik, Yuljong Simimans Kunla, Tashi Delex Shuadats.
1: शाम को एक अलग जिला बनाए जाने की लंबी समय से चल रही मांग पूरी हो गई है जो यहां के लोगों की आकांक्षाओं सुविधाओं और विकास से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है मैं शाम और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को इस बात के लिए दिल से बधाई यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका प्रधानमंत्री जी लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लद्दाख और देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र और समावेशी विकास हो तथा यहाँ रहने वाले लोगों की बेहतर सुविधाओं और को अवसर मिले शाम को जिला बनाना भारत सरकार के उस इरादे को दिखाता है जिसमें प्रशासन को लोगों के करीब लाया जा रहा है और दूर दराज के अहम इलाकों में जवाबदेही और शासन को सुनिश्चित किया जा रहा है
0: Shrijin Drupati Murmu, Sikkim Irgyalsa, Gangtok Nanga, Namgyal Institute of Tibetology, Sonas Iziskor Zatenok, Ir Sonaspo, Nangpe Chosla Lobjong Tang, Jipshot Zachistang, Sikkim Tete, Himalaya Region, Siskatang Shiriga, Yergesa Zachisito.

0: Ibu Akashwani le in kasetyang chandolma na natsul sanachat le tongkhere na nga thungchi ATM idun la kusek tang ome parlor ja che sepia Ladakh Malik Federation and Municipal Committee ngiski parla chaton jiksong tenok chaton nangjin Ladakh Oma brand ni ming ka Ladakh Malik Federation ni chok ne chi ATM bo se dun ni bo dunika Oma pustak chani zathung is Tonske Zatche Sinok Ger Tangjung Pare Tundeli Chakla Zadin Jigi E Federation Chokne Chui ATM Mimans Tang Janyang Scorings Pagoni Pia Tungchi Spuska Top Chukche Sila Siri Nanga Kyongche Sinok Chatuni Ikchala Municipal Committee Executive Officer Tanjin Rabgyas Tang Ladakh Malik Federation Managing Director Manoj Kulkari Ngiske Zatte Nok Yang Ipur Kyute Chui ATM Shulche Sepia Municipal Committee Ajung Nyotkani Jaktungi Cholta Metkan Choche Tang Mimans Lajab top chukches poinok Ladakh Oma Milik Filer tang water ATM gyokspa rang tingma dunja kuninanga guzuk chache senok Anjuman Manul Islami Tongi Yesar Pelige Jigina Ashat Kan Nangjin Idul Zuwa Tushchen Thore Idu Idke Ka Thore Idke Ka Ngato Chuchot Rukwi Ka Siches Inok Stojungi Cabinet Is Tonsa Natsok Sika Thakchat Zate Inok Zabtung Is Puske Shungskyo Bi Charji Lagle Na Kyun Yotkan Bijas Te Yuli Tommy Jewar Gechu Jigai Pantok Lebin Jikta Anok Mimans Kunla Dani Rashani Pantok Salte Mimans Kunla Kusnyo Miyar Gyas Kyongche Sibar Son Chik Inok Molin Jikta Stojungi Salpel Tang Tinskele Lunpo Ashwini Vishna Bishadal Zat
1: कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है भारत में गरीबी कम होने का भी इसका इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है बच्चों की जो ग्रोथ होती है स्टंटेड ग्रोथ ना हो प्रॉपर ग्रोथ हो उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है
0: Soju Lunpe, PDS, Fantox Lenkani, Ming Tozachi Sinorian, Ibor Gute, Ospachan, Mimans Kulna, Pantox Lepches in Okmolin Jiktang, Itora, Artificial Intelligence, Rostang, and Pozachi in Okmolazat.
1: पहला निर्मल वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खासकर आज एआई का युग है तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट मान लो राज्य सरकार की कोई उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके तो देश में जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है निर्मलता के शुचिता के साथ हो रहा है ग्रीवेंसेस कम होती है तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा
0: Lena Juk Seyotkan Nur Bakshia Mimas Kune Thore Idul Adha Jama Majis Kampari Ka Ngato Chuchor Gui Kasti Shung Zachi Senok Nur Bakshi Mimas Gun Idul Adha Nimasil Childa Shkyot Mostyo Tenok Semskan Tang Dilte Rok Sal Childa Sojong Kamde Tang Nansans Pande Lon Kungi Teli Manas Suk Seyot Tenok Yang Semskan Sifya Rok Den Childa Rin Met Pa Phone Tang Childa Phone Number 14416 Sika Phone Sal Te Rok Den Yan Chi Senok Shredzin Dropati Murmi Siki Mi Natu Tule is called Zatenok Teroshi Zinis, Magmis Ponbogunang, Kyoktongunang, Pojazum Zatenok, Magmis Ponbogunish in the party Murmur, Natuleka, Zadim Nazoxi Zadin Yotkan Escola, Shalazatenok. Ladarsne Ice Hockey Team, Yuli Dani Ice Hockey Dandurinanga Tushesla, Ice Hockey Salpa Gundam Chesenok, Putsapomo Gunlojongis, Gunlojugnis, Gunlojugnatang, Gunlojugan Lonkan, Ice Hockey Salpa Guni, Fair Selection Trial Mail de Sesumchune, Junil de Seji Sopa. Arena India Sports Complex ka talik ja chese sestang spektyo denok yuli dani ice hockey dandur deradun nanga junil de chuksik ni phala si chese nok जुनिल दे छे छिक नेपाल इग्नुइ ग्युक्स गोजुक छाचे सिनो इग्नुइ स्टडी सेंटर इचेम कॉलेज ले छोक ने सरपेल इगे जिगी नंगा रस्तुस पागुला शादा जात कर नंगजिन ग्युक्स अथु सस्क्यो तु रोल नंबर ते माना एडमिट कार्ड मोस्तक से शुगुस पेर ना आधार कार्ड पैन कार्ड तंग छुज नोट खुश देश के चीज दा मोस्त होते नो एडमिट कार्ड तंग उस पे मोस्तक से शुगु मेद नर ग्युक्स सोस्कांग नंगा थुशेस छाचुक चेस मन जुरो उजुंग नंग पे चुकलक लोमेर खांगे सोवारिक पा मेडिकल कॉलेज तंग हॉस्पिटल इनांगा बी एस आर एम एस सी प्रोग्राम में लोपचोंग लेंचेस ला एडमिशन लेंचेस को जुक सोंगते होते नो इस सोना सिका सोवारिक पे लोपचोंग इतोगा कोनस चोंगा योते नो कें रजिस्ट्रेशन गुन मेल देचेस निशु संगा ने जुनिल देचेस निशु संगा चुक पा तुस्तत पोस्ते होते नो इना तंग्यांपो आकाशवाणी लेने ताना चुलतोन।

कसदा पराया धन फिल्म में लो किशोर कुमार ने संचिसला फलन आनंद बख्शीर तुम्सकन लोआ यंग स्टिक कन आर डी बर्मन।

दक्षिणी चिरंगी, हाथ की सफाई, फिल्म लो, किशोर कुमार तंग, लता मंगेशकर नी सनजत्स, लुरसोम कनिन पिन, गुलशन बावरा, यंग लोयंग स्टिक कनिन पिन, कल्याण जी, आनंद जी, कसदा फिल्म लो विक्रमे सिंह जुगपे का, लता मंगेशकर तंग, मोहम्मद रफी सेल कनिलो, जंजीर फिल्म नी संचिसला फलन, गुलशन बावरे सोम अजत कनिलो, यंग स्टिक अजत कन, कल्याण जी, आनंद जी।

0: उमंग अब चुंगाई का टुगे का आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी तंग अंग्रेजी नमूना चुल टुकता उसकर मश चुई का जिंगपे सोंसकर डिक्रम संचिस लपलन डिक्रम फुलकन वलाम अब्बास डिक्रम एकोडिक जतकन सोना मौचोक टुकता उसकर मश जिपचुई का मखमी क्योंतोंगो ने पिया डिक्रम नंगा फिल्म लोरेक संचिस लपलन लदख सिना नचुल तंग डेलचत सना जदिन चुचोत दंतंस कर्म चोंगे का दंतंग फेदिका छिरिंग लामोतंग ठपागुनी सेलकनी लोरेक संचिस लपलन आकाशवाणी श्रीनगर ने दुनतांस कर्मा जिपचुका और दिनांगना छुलतांग तपसरा थोड़े छाने छुचोर गया देखा पोमोगुने डिक्रम पोमी जिक्स दिन संचिस ला पलिन ई डिक्रम नंगा स्मोनला इंटरनेशनल यूएन पीस कीपर डे थोगा तमडिल यहाँ ने डिक्रम नंगा साइकोलॉजिस्ट स्कूजब फुंचो दिश के तंग यंपो टीवाटिलन जिक सना जदिन डिक्रम फुलकन गुन स्तंजन डोलमा तंग दे जनमो डिक्रम एकोटिक सतकन छिरिंग छोरोल ज्ञातंग फेदिका मोहम्मद हुसैन सेलकने पुरकी लोरेक संचिस ला पलिन आकाशवाणी दिल्ली ने जगतांस कर्मा जिप्चु जाए का समाचार संध्या न्यूज एट नाइन तंग और दिन आनत सुलगुन यहाँ डिक्रम इस पे स्तिंजुक पे का थोड़े छाने छोचोत रुगुदांग फेदे का पोत पे डिक्रम कंगरी नूरबू संचिस लपलें ये डिक्रम इन आंगा स्कूनला साका दावे थोगा तमडिल यहाँ ने डिक्रम इन आंगा स्कूजब्स तेंजिन कल दिन तंग यहाँ पोटी वटी लंजिक सन जदिन डिक्रम फुलकन गुन सोनम छोकी तंग छोकी लामू डिक्रम ए कोडिक जतकन लोबसंग नम गेल कसा इगुनिन पेन गजे दिरेंगे डिक्रम निस्पातं थोड़े से डिक्रम गुने स्कोर गुन नजे आकाशवाणी लेने श्रिंजिक तांग फितो छुचो टुक छद कसदा आकाशवाणी दिल्ली ने स्कोला हिंदी अंते सिंह ने अंग्रेजी नंगन छुल सनचार
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय

शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ngatang su chang me de ni is chal ngun ka yar gyas khong se ingun ngatang ra ngan me ngata kasuk sik ngata za da nang te un nyan sum mi shuk chas pu ngatang junu po mo chang me tu ka chen mo no yang gan ba chang me tu ka chen mo no ka bo ngata junu po mo ngun la jang tha tu gu ngun la yan sa yon chang ngun la sta din skyo ches pu ka se ju ding nang ji na ngata bal ji tang yo to ji gyo gan na te te bi ngata cha go cha mu te ni tha tu gu ngun la ngata she sa no man na ding kham pa ji na ngata lag la sik chua met na te ni ding ngata ते खंपे ठुगु बला दिन लगला शिक्षा सा नवा जना शेसा मेनो ने यंग जन्मा जी के लगला शिक्षा तो अच्छी पु यूची चीज से नो जुसे गता टिवा हो गता आवा लंसा नो जो ते ओ मिलांग से से पिया ने जान है फमांग ने तुका छेन मोनो जान जान है फमांग ने तुका छेन मोनो गन बसा में तुका छेन मोनो नंग मुला गता लगला जो जस कजु खेन गता लाख से नंगा सिज गन में सिरके गिनो पमो ने गता बाल खचेस बुचा मोने गता योक तो स्कुरु योक चेस गिनो दिन Abashi gis ngata nganma inna gentu lash kyo tsana ngata yokto yokche skuru khalche si ngata lobzot pin inna yang dakse tuzmul na teun ngata ingyamste yote nok yang tena tsokla banma amangun inna gentu lash kyo tsana trugu jun kyo tse yang kampa nangun lash juk tsana ngata bal khalche ta daksa te zangme na ngyamchak songte duga ju ta ingun ngata ra lakse sherjiks ngun teingun ngata ingyans ma shuga ngata chik tang chikis I yon tan bang len goshez ma khakchani nok drinke na ngata diloga yon tan chik chiga yon tan chik zere na ngata bor tena ju na tebo no स्टूल चेन मोजी के नो डिलोगे यों तन बसं खाक्चा स्टाचा ये गतान रास्ता देखियो आजू बो इमुनी नो आजू दिलिंग डिलोगे यों तन चिकचिक योते गता लियंग आंगुनी यों तन मेत पालाशी गता डुबा नो आजू ना डुबा मानो देविया जान यों तन मुनांग यों गोशे माखाक्चा नो कजुक रिग्नस गता आज चुना तेनी ई मुनांग रिग्नस चिकचिक ना यों दो दक्षा गता आज चिपो प्लम्बर जूसे तेना चोला इलेक्ट्रिशियन जूसे ते चोक सेना गता यंग गोस्काप मामंग पोजिक गता मीमांग स्कुलना योते नो ते तेमुनिका गता छगला जग गेन चिजिन ओदरिंग गता सेमपेक सरिन समेन नंग तेबे कांग गता यंग छगला जग गेन चिजिन ओ तेना चोकला तेनांग मेन पंग यंग गता खचि खेनंग गता यंग छनमा जिक पे जोथाप तांग स्तुनते यंग तेनांग गता मामंग पे योते नो जु दक्षा गता थुलकोर शुलचस मामंग पे गोत क्या यंग गता तेओ मेन पंग गता ऑनलाइन सोंगला जचि संग गता यंग मामंग पोसिक गता इना योते नो ते ते छंगमेना गता छंगमे इचोक सिंग गता गोस्कप मुन सारे गता इचोक से फंतोक सुन गता तुस तुसि का गता छंगमे लेन गोशेस पो मा खचानि नो दक्षा गता सोजुंग रि छोकना इबे का मामंग पोसिक गता स्मूल जोक सालिन जिकतांग जोंदार मुन गता नसा सोसे का सालिन जिकतांग योते नो ते तोस मुनि ना मिमांस कुन थुसा जाते रंग नंग रंग योंगो चानी गता गमयुल पाजि गिरचु चसे पे इ तोस फंतोस मुन गता लेन गोसे जिनो जु तेनि ये जेवा चोन ये जा मिमांग संगमे गता लदाख से लगलास मुनि का यरग्यास खवा जाते लगलास मुन न्यास माशुगा बोर्चे से गता संगमे सोंदुस्ता रेवा छेन मोचिन कसे जु कसा सनकान लंग्यासली यस्तिंगना सनकान लंग्यास सेशंगेल लामा सेवांग डोलमे सलाजात कानी ई जुंगलोबो सांचेज लापुलेन

जय हिंद। स्वागत है हमारे प्यारे फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फौजी भाई सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं लगान फिल्म से गीत, आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार ए आर रहमान।

आइए अगला गीत सुनते हैं विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल और अमानत अली की आवाज़ों में दोस्ताना फिल्म से। इस गीत के बोल हैं अन्विता दत्त के और इसे संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

फौजी भाइयों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगला गीत सुनिए सिंगिस किंग फिल्म से, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। मयूरपुरी के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में चमेली फिल्म से गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार थे संदेश शंडलिया। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लिए केंद्र से

इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए, सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है अजय अतुल ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए किस्मत कनेक्शन फिल्म से गीत मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। शबीर अहमद के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है।

0: Ibu Akashwani le in kasitiyang chindolma na natsul sanatsat. Ladakh sefya chutang sajing bad ke stanji togala se shulche sefya sindu jal samridi abiyan nangjin rock check dam zate yutkan boshis kyung jon babi ke sakse ne guzuk tendil zate nok. Ladakh se sajing bad ke de tonsket kun ITBP lenches la ITBP le frontier tang ujung azde Nyamrok laskung ipar la chatunjik zate nok. Sojung cabinet is public distribution system in Aguja Kyongche la sartak PDS ifes nispe pia chevartung ishu sanga tang habge sumchu sanga nawasal tenok. Kasata natsul kunjip saltang yapo sanazat. Ladak se pia chutang sajing badke stanji pia rosong yun chani stanji taps sindu jal samriti abiyan nang loga rok jek dem zate yutkan bo guzuk stendel shiskyong jambabi ke saksene zate nok. Ibur gyute chu pele tus inanga chu ma mangpo yotus shalte kher ma chugar kakse boshche zote nok. Shiskyong jambi eksika shatkan nangjin itokse dem sum stakcha de tsul la sajang zate la den chutang chulog e goktap Silas Kunga Kaspelto Tenok. Kongs Rock Chick Dembo, Ladakh se Koruk Shunskyo Bitoka Sachan Lassi Chickang, Engineering Kaksachan Jiguche Sirewangon Chuga Zatu Tenok. Leton Kerinanga Tungchu Eti Medula Kusek Tang Ome Parlor Zache Sefia, Ladakh Milik Federation Tang Municipal Committee Niski Parla Chatunjik Sontenok. Chatun Nazin Ladakh Oma Brand Meika, Ladakh Milik Federation Ichokne, Chui Eti Mborse Dunika, Oma is Pustak Chanis Abtung. Tonsket zatchesinok ger tangjung ipare tundeli chagla zadenjik I federation ichogne chu ATM mimangs tangjena skolians pa guni pia tungchis puska top chukche lala sirina kyongchesinok chatoni ikchala municipal committee executive officer tanjin rabkyas tang ladakh milik federation ni managing director manosh sullani niske pala jatenok ibur kyute chu ATM shulche sepia municipal committee junyut kan ejak tong sulta met kan jo chestang memang la jap tok tok juk ches poinok ladakh oma milik filer tang water ATM gyoks parang tingma dunjak kuni nang le nang gu juk chaj senok ladakh se sabat pa gun nyamrok chokspa tang farmer producer organization gun ne chongsa ja che sepia ITBP le frontier tang ujung nga de nyamrok lasku ngiske parla chadon jik songtenok shishkyong jonbe I chadon bo sabat pa gun la chongsa salche sin na nga cholta gun selche sepia tap shiginok molte yotenok chadon nang jin chotma ome tonske tang jana khakchan zaptung I chala kun tang che si rok za che sinok I gun ladakh nyamrok chokspa farmer producer organization primary agriculture credit society gunnikani lenchesinok chaton bon nanglon ami sher milam nangjin magmi gun la sana se tonsket gun nyamrok se chokspa gyote kyongche se togar ne la sir chiginok shishkyong jun be illa sir bo gyote nyamrok chokspa gyote gunur paljori nanga sana se memangs gun al rok lepches gamyuli nanga chepi las kap tang ches tang gamyul phang se thom chok la skyo chuk ches gun gak ches rewa chik rewa ngon chuga chate nok Anjuman Manuel Islami Tongi Gesal Peligeshi Gina Shatkar Nangjin Idul Zua Tushchen Thore Itke Ka Ngato Chutso Gui Ka Sishung Zatches In Jorok. Sojung Kabinet Sardak PDS Tonsar Natsok Se Ka Thakchat Zatenok Zabtung Ispuske Shungskyo Becha Jilak Lena Kyung Anyotkan Is Bejaste Yuli Tommi Jewar Gyachu Jiga Pantok Sabchiti Injik Tanganok. Mimangs Gunlal Dani Rashari Pantok Salte Mimangs Gunlal Kuznyo Michir Gyas Kyungche Sibarson Chik Inok Mol Injik Tang Sojung Isalpel Tang Tinskele Lonpo Ashwini Vijnabe Shadat Zat.
1: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है भारत में गरीबी कम होने का भी इसका इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है बच्चों की जो ग्रोथ होती है स्टंटेड ग्रोथ ना हो प्रॉपर ग्रोथ हो उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है
0: ina tuzla sojung ilon pe pds phantok lenkhan iming to jachhe sinok yang iburkute ospachan gunla phantok lepche sinok molen jiktang I thoga artificial intelligence rocks tang yang po jachhe sinok mola jaj
1: पहला निर्मल वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खासकर आज एआई का युग है तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट मान लो राज्य सरकार की कोई उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशरीज का सिलेक्शन हो सके तो देश में जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है निर्मलता के शुचिता के साथ हो रहा है ग्रीवेंसेस कम होती है तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा
0: लेना जुक सेयत का नूर बख्शी मेमास कोने थोरे ईद उल अदा जमा मस्जिद कंपारी का गतो चुतुरगुई का सिजुंग जचे से नो नूर बख्शी मेमास गुन ईद उल अदा नेमा सिलचे दशक्यत मते होते नो इना सुलगुना काश वनी लेना संचे ला पुलिन जिक तंग इन शजिन तो पति मुरमे सिकी में नंगा नथुले काजिस कोर जाते नो तेरो शजिनेस मगमिस पोनबो गुंतंग क्योक्तंग गुंतंग या पोज जलम जाते नो मगमिस पोनबो गुने शजिन तो पति मुरमा नथुले का चर्जिम ना चोक सिक जाते नो का ने स्कोल लंग शदा जाते नो सिम्स कम तंग डेलते रोक सालचे ला सो जो इन कम दे तंग नंग संस पंदे लोन कुंग इस टेली मनास सुख से होते नो सिम्स कम से पेर रोक लेंचे ला रिन मेट पर फोन तंग चीज ला फोन नंबर 14416 का फोन साल तेरह दिन यंच होते नो तेरिंग ग्यारह शिल्लों तंग पोस कुछ एक्स पंडित जवाहरलाल नेहरू टोंग जक सिंह जिक तंग नो लद्दाख डायरेक्टर कांग्रेस कमेटी टिपा नवां रिक्त जोरा तंग लसन पगुने ग्यारह शिल्लों तंग पोस कुछ एक जवाहरलाल नेहरू टोंग जक इस कप्तान कुछ ज्वेता ते नो ग्यारह जंगचेस तंग यूली नंगा मीमांस मंगलों से जोंशु लिस्ता वास के चुपचे से नंगा छकलस गांशन जात कर गुन टना जाते होते नो तेना चोकला जोंग कांग्रेस कमेटी शिल्लों तंग पे छकलस गुन टना जाते जिक तंग कुछ एक्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्यारह नंगा योनता ने सोना संजय से स्थाक्षर दे सोना गुन जोटा खांगताल दानी जो थोकने यार्गियस गंशन जाते योतकन वांग टना जाते होते नो ईदुल आदे तुष्टेल नया दून सुस्ते हज कमेटी यूटी लद्दाख ठिपा गुलाम बाबा जबी दे लद्दाख से मेमांस गुंतांग सऊदी अरब ना हज नजर जादे न्योतकन लद्दाख से जलमी गुलना टशी देलेक जो जाते होते नो ई चिनलब चने तुष्टेल क्यूते चीन बस सालचे चिकटील जोतपा गुमचेस तंग चमसेस कोला स्कूल मा जिक थे जादे जिक तंग खोंगिस लद्दाख से नजर लस्क्यो ते योतकन हज जलमी गुन ट्रांसपो नंग यंपो खमजंग तंग यंपो रंगयु लद्दाख लालोक देलेपचे सीरीज मोनजंग पो मोनचो लद्दाख ने आइस हॉकी टीम युलिदानी आइस हॉकी डंडुरी ना तुशेजला आइस हॉकी सल्पा गुंडम चेसेनोक पुचा पोमो गुंगलो चुकनीस गुंगलो चुपगा तंग गुंगलो चुपक्या लोनकन आइस हॉकी सल्पा गुने फिया सिलेक्शन ट्रायल मेल देचे सुमचुने चुनिल देचे जी चोपा आइस अरिना एनडीए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का टलिक जाचे से सिस्टम्स बेलते होते नो युलिदानी आइस हॉकी डंडुर देहरादूनी नंगा चुनिल देचे चुकशिक निपाला सिचे सोते नो जुनिल दे से चिक निपाला इग्नू ग्यूक्स कोजुक चेंजिक तानोक इग्नू स्टडी सेंटर ईजीएम कॉलेज के कोऑर्डिनेटर इचोक ने सरपिल ये जिंगिनार शादाजात करनांग जिन रिल्स

0: सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

हुआ। आज पूरे जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तकरीब सईद तुज़ को एहतिशाम और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से वादी की मसाजिद खानकाहों ज़ियारतगाहों बुक्काजात और इमामबाड़ों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनअक़िद हुए। इस दौरान उलमा ने ईद उल अजहा के फलसफे पर तफसील से रोशनी डाली। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा असर शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनअक़िद हुआ, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने आलम इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में अमन अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी।

0: अहम जो तकाजा है वो ये है कि इस ईद पे हम अपने उन हमसायों या हमसे जो दूर रहते हों, जिनकी जान पहचान हमें है, जो कस्ब कुर्सी की हालत में हों, जो जरूरतमंद हों, उनको नजरों से ओझल नहीं करना है।
1: MLA लालचौक एहसान परदेसी का ईद पैगाम।
2: मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपकी हर कुर्बानी कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों, सुकून और बरकतों से भर दे।
1: समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई अहम शख्सियात ने भी ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने पैगाम में कहा,
3: मैं बशीर आरिफ अपने तमाम सुनने वालों को, मद्दाहों को, दोस्तों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ये ईद हमारे लिए मसरत का बायस बने, शादमानी का बायस बने और हमें तौफीक दे कि हम अपने इर्द गिर्द जरूरतमंदों की मदद के लिए पेश पेश रहें।
4: मैं फिरदौस साद भट, चेयरमैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स वुमेन कश्मीर, प्रेसिडेंट जैन के ग्रेजुएट एसोसिएशन, आज इस ईद के अजीम मौके पर अपनी दिल की अकीक और अमीक गहराइयों से तमाम उम्मत मुस्लिमा, खुसूसन बाशिंदानी जम्मू एंड कश्मीर, खुसूसन इंजीनियरिंग मेंबर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रेटर्निटी से मुखातिब होकर उनको ईद का सलाम, ईद मुबारक।
5: मैं वहीद जिलानी, एक फनकार, अपनी तरफ और अपने अहले खाना की तरफ से पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज का ये मुतबरक दिन ईद उल अजहा मनाते हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे आज का ये दिन हमारे लिए खुशियाँ और मसरत लाए।
6: जी, मेरा नाम डॉक्टर शाजिया हमीद है। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
7: मेरा नाम मुश्ताक अली अहमद खान है। मैं थिएटर डायरेक्टर हूं और फिल्में भी बनाता हूं। मैं तमाम हमवतनों को, चाहे वो कश्मीर में रहते हैं या पूरे J&K में रहते हैं या पूरे अपने देश हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको ईद के मौके पर बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं और साथ में ये दुआ करता हूं कि हम सब लोग मिलकर बरादरी, अमन, मोहब्बत और खुशी से ये दिन मनाएं।
8: मैं साहिल डार, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन का सदर। मेरी तरफ से आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर के सरबराह जनाब तारिक राथर साहब और उनकी पूरी टीम को और सारे सामाइन को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे ये ईद हम सब के लिए खुशियों और मसरतों की ईद हो।
9: मैं सागर नजीर, इस ईद सभी को यार मिले और आंगन आंगन फूल खिले। ईद की खुशियां सब के लिए एक जैसी नहीं होती। अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे मासूम चेहरों का खास ख्याल रखें। ईद अपनों के साथ साथ उन जरूरतमंदों को खुशी में शामिल करने का नाम है।
1: ईद उल अजहा के तनाजुर में बुजुर्गों को भी एहतियात से काम लेने की जरूरत है। इस हवाले से बुजुर्गों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
10: चूँकि गर्मियां हैं, इस ईद पर बुजुर्ग लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। गोश्त खाएं लेकिन मॉडरेशन में। तेल वाली और हेवी मील्स खाने से परहेज करें। कलेजी, गुर्दे और बेजा जैसे ऑर्गन मीट कम मकदार में खाएं, खासकर अगर गाउट, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी की बीमारी हो। पानी ज्यादा पिए। कोल्ड ड्रिंक्स और पैक जूस पीने से परहेज करें। खाने के बाद हल्का वॉक करें और अपनी दवा वक्त पर लें। गोश्त को अच्छी तरह रेफ्रिजरेट करें और ज्यादा देर तक गर्मी में बाहर ना रखें। घर के बुजुर्गों को चाहिए कि जानवर की खाल, अंतड़ियां और दूसरे वेस्ट को म्युनिसिपल गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक तरीके से डिस्पोज करना इंश्योर करें, ताकि कुत्ते, मक्खियां, बदबू और इन्फेक्शन से बचाव हो सके। सफाई भी सेहत के लिए जरूरी है।
1: उधर सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मक्का शरीफ में हुजाज किराम ने कल रात मुजदलिफा में नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा करने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारी।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Dagsang isirang ay dawadol matang topaguni sel kani jabri lurik sanatats. Ngaji akashwani lene shunjik tain sani shotsot irgetang skarma jibchu janga chaduk. Kasita akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 tang urdinana tsulgun sanatsat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता।

दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक

0: exclude cereal tribes from its purview in order to preserve constitutional protections and customary practices, while replacing religion-based personal laws with a common framework aimed at ensuring equality and gender justice. Under the marriage provision, the bill mandates monogamy and prescribes a uniform legal age of 21 years for grooms and 18 years for brides. Speaking to the media after the passage of the bill, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that the legislation would now be sent to the Governor of Assam and subsequently forwarded to the President of India for assent.
1: Adoption of uniform civil code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam.
0: Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
2: Union Home Minister Amit Shah has congratulated the people of Assam for the passage of the Uniform Civil Code in the State Assembly. In a social media post, Mr. Shah said under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, BJP-led state governments are establishing uniform law for every citizen. President Draupadi Murmu today flagged off a women-centric public transport service titled Pink City Runner Ama Didi Bahini Bus Seva at Gangtok in Sikkim. Later in the day, President Murmu addressed the convocation ceremony of the Sikkim University in Gangtok. She said development of the Northeast is vital for the country's overall progress.
3: नॉर्थ का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं यहां के युवाओं में असीम प्रतिभा है सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े
2: Defence Minister Rajnath Singh today chaired the sixth meeting of the informal group of ministers in New Delhi to review the availability of essential commodities and the resilience of our supply chains amid the West Asia situation. In a social media post, the minister called upon citizens to avoid panic purchase of petrol, diesel and LPG as the government is pulling out all stops to ensure the availability of all essential items. In Kerala, five people were arrested after alleged attacks on Enforcement Directorate ED officials during protests by workers of the Communist Party of India Marxist in Thiruvananthapuram. The ED today conducted raids at multiple locations, including the residences linked to former Chief Minister Pinarayi Vijayan at Thiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points, held by South Korea's Kim Ye-ji, and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
4: ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि AI की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज GPS के जरिए ट्रैकिंग और QR कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम PDS के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में PDS को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये अकदाम PDS के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलातो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
5: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में 3 बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफेदीन का निजाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज़ के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की

0: जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए ये बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजर सानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब

कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है, तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अजम रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिक के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।